पइयो सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबस आधार जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदार एहे वस्त तजी नह जाई।

जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल में हो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सनु कृपाल संभाले साहे साहे।

न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे।

हुक कर संतन की तोरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। तुदे अगे

कई कोट कृपन कठोर, कई कोट भेगा आत्म न कोर, कई कोट पर दर्प होरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया सरमा है, कई कोट परदेश परमा है, जित जित लावो तित लगना नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सजदी जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर पाए, कई कोट पात्र बिखरे बजाए, कई कोट पवन पाणी बैसांतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्या सूर नखत्र, कई कोट देवदान मिंदर सह सतर, सगल समगरी अपने सूधार, नानक जिस तिस भावै तिस नस्तार, कई कोट राजताम साधक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थ शास्त्र, कई कोट कीरतन संबंध, कई

उनकी सेवा सोई लाग जिसनु कृपा करे बट भाग नाम जात पावे विश्राम नान तन पुरख उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग तैसवाए हुए सोए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दर्शाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओहे सुखन।

राय मूर्ख मना सुत मीत कटम्बार बिनता इन दे को तुम कवन सनाता राज रंग माया बिस्तार इन दे को कवन छुटकार अस वास्ते रथ सवारी झूठा ठाप झूठ पसारी जिन दिए तस बुझे ना बिगाना नाम बसार नानक पछताना गुर की मातू ले आने भगत बिना बे डूबे सियाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गिलक जाए आप जपो हबरे नाम जपावो सोनत कहत रह।

कार असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाग पातशाही दसवीं शपै छंद त्वा प्रसाद। चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जह, रूप रंग अर रेख भेख कौ कह न सकत कह। अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण साहै साहाण गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत, त्वा सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रयात छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग नूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे। नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग धामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ढाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे। नमस्तंग दारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सो एकै नमस्तंग नेकै नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग नृकर्मे नमस्तंग नृपरमे नमस्तंग नृदेशे नमस्तंग नृपेशे। नमस्तंग नृनामे नमस्तंग नृकामे नमस्तंग नृताते नमस्तंग नृकाते नमस्तंग नृतूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग नृतापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने। नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गमे नमस्तस्त रमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे। नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्तु अजबे अदेसंग देशे नमस्तंग भेसे नमस्तंग नृतामे नमस्तंग नृभामे। नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले। नमस्तस्तु देवे नमस्तंग भेवे नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबणमे। नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले। नमस्तस्तु दयाले नमस्तंग भरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग। नमो सर्व धंदे नमोस्तु अबंधे नमस्तंग नृसाके नमस्तंग नृबाके। नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते। नमस्तस्तु रागे नमस्तंग सुहागे। नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता। नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले। चाचरी छंद त्वा प्रसाद। अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमाण हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं नृभूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अलाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं नृश्रीक हैं नृलंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अभूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अक्रम हैं अभ्रम हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं मान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं। भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी प्रमाथे। नमो भाण भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भाण भाने नमो गीत गीते नमो ताण ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो भाण भाने नमो बाद वादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे। नमो राजराजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरं परम वृद्धे। नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते। नमो नितनारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग। नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच दानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अधो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं।
अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो प्राजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद। अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्वंग नृणाथे नमस्वंग प्रमाथे नमस्वंग गंजे नमस्वंग पंजे नमस्वंग काले नमस्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वजमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी। चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग।

अंतपूरन परमेश्वर है। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज उस परमात्मा की होंद बारे दस रहे कि जिस वक्त यह सृष्टि नहीं सी उस वेले भी वह परमात्मा सी, अज है अज भी परमात्मा है, तो एक दिन ऐसा समा आना है। सृष्टि नहीं होनी पर परमात्मा होना। आदि पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वर। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज अज दे हुक्मनामे दे विच ये बख्शिशां कर रहे ने। परमात्मा हर थां ते मौजूद है, जर्रे जर्रे दे विच समाया होया है, ते जेड़े उहदे प्यारे ने सिमरंत संत सर्वतर रमण। रब दे प्यारे उस परमात्मा नूं याद करदे ने। सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अग नासन जगदीसर। अग कहिंदे ने पाप, नासन कहिंदे ने पापां नूं नाश करन वाला। जिहड़ा परमात्मा हर थां ते मौजूद है, उहदे प्यारे उहनूं याद करदे ने। ते हे इनसान, तैनूं मनुखा जन्म मिलिया है, तूं वी याद करिया कर। ओ वाहिगुरु परमात्मा सारे पापां नूं नाश करन वाला।

असंख जप, असंख पाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर।

गुरु प्यारी साह संग जी करो रसना पितर कोई भी रसना बांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे ही अत चंगे भागा वाले हाँ जो अपने स्वासा की पंजी में सफल करते हुए गुरबाणी के नाल जुड़ रहे हाँ। हने तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अखंड पाठ साहब जी के भोग पे हैं। सतगुरों ने परिवार के उत्ते बड़ी कृपा की है जिस परिवार को यह अखंड पाठ साहब की सेवा मिली है, क्योंकि बिना भागा तो सेवा प्राप्त नहीं होंगी। सेवा तो ही प्राप्त होंगी है जे सतगुर साढ़े ते कृपा करन, कोई पूर्वले चंगे करम। जदों भी आपां गुरु घर आना है निम्रता दे विच आना है, निम्र रहना है, क्योंकि गुरु सब तो वड्डा है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो उपर कोई भी नहीं है दुनिया दे उत्ते। सानू सारयां नूं ही इन्हां दा सत्कार करना चाहीदा है। मन लखाए मंडल में आए, जिहड़ा बंदा इत्थे आया उन जाना है, यह पक्का है, टल सच्चाई है। कोई इदां दे कर्म करके जाइए जदों सतगुरां दी दरगाह दे विच जाइए तां घट्टो घट्ट अपना मूँह उत्थे दिखा सकी असीं। कोई इदां दा कर्म ना करके जाइए जिहदे नाल सतगुर कहण वी भाई आह की करके आया तू। सो हर समय निम्रता चाहीदी है, दया चाहीदी है, धर्म चाहीदा है। अपने मन दे विच किसी का माड़ा नहीं सोचना चाहिदा, अखा ना माड़ा तकना नहीं चाहिदा, कन्ना ना माड़ा सुनना नहीं चाहिदा, क्योंकि मन साडा बड़ा चंचल है। जिहड़े असी उपरले पाप करदे हां उह तां देख लैंदे हैं सारे, पर जिहड़े मन दे पाप है ना उह कोई नहीं देख सकदा। असी एक दूजे नूं प्यार नाल बुलाते हाँ पर अंदर साढ़े खोट हुंदी कई वारी। वो सतगुर देख लेंदे ने भी ये बंदे दे मन च की है, ये थानू किस भावना मिल रहा है। उत्तों तो थानू जी जी करूंगे पर अंदरों थोड़े नाल पता नहीं की सोच रहे होंगे मन दे विच, क्योंकि सतगुरों ने कहा है भी जे भला करांगे तो मूहरे भला आऊगा, जे किसी लिए खड्डा पट्टांगे तो खड्डा अपने लिए भी पुट हो जाना है। सो मैं ज़्यादा थोड़े स्वास्थ्य नूं खराब ना करता हुआ अपने गुरु घर के हजूरी रागी भाई हरबख्श सिंह जी को बेनती करता हाँ, वो आप जी नूं 11:30 तक गुरबाणी कीर्तन के नाल जोड़नगे। करो रसना पवित्र कोई भी रसना बाजी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु प्यारी साध संगत जी तनिक हाजरी आप जी ने प्रवान करनी जी कीर्तन करदियां होईआं बेंत गलतियां दी खिमा बख्श देनी जी आप सब जी ने असीस बख्शिश करनी फतेह गजाउणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु प्यारी साध संगत जी करो रसना पित्तर कोई भी रसना बाजी ना रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इह सन गुरु घर के हजूरी रागी भाई हरिराज सिंह जी का जथा जो आप जी ने गुरबाणी कीर्तन के नाल जोड़ रहा सी। आपां सारे ही अत चंगे भागां वाले हाँ कोई पूर्वले चंगे कर्म जो अपने स्वासां दी पूंजी नूं सफल करते हुए गुरबाणी कीर्तन के नाल जोड़ रहे अपने गुरु घर विखे 27 तरीक तो लैके 31 तरीक तक बच्चों का कैंप लग रहा है जिदे विच बीबी गुरप्रीत कौर जी मलेशिया तो चेजे तौर पर आ रहे हैं ते बाहर एक टेबल लाया गया है कैंप वास्ते डोनेशन टेबल जे कोई सेवा करनी चाहता है डोनेशन देनी चाहता है तो वह बाहर टेबल दे उत्ते दे सकता है। मानस देही बार बार नहीं मिलती मैं बार बार जो स्टेज तो मौका मिलता कहना हूं 84 लाख जून 83,99,999 तो बाद जाके मानस देही प्राप्त होंगी है। इस देही दे विच ही आके आप जन्म मरण के गेड़ तो बच सकते हाँ निकल सकते हाँ। देवी देवते भी मानस देही नूं लोचते हैं क्योंकि उन्हों का छुटकारा उत्थे भी नहीं हुंदा जिन्हां नूं आपां कहिंदे ना देवी देवते वह भी कहिंदे सानूं मानस देही मिल जाए तो असीं निकल जाइए इस चक्कर दे विचों आण जांदे। हुण आप जी नूं साडे गुरु घर दे हजूरी कथावाचक ज्ञानी दलजीत सिंह जी 12:30 बजे तक गुरबाणी कथा विचार दे नाल जोड़नगे हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाईयां। जिहड़ा कीर्तन है वह है एक तेज मीह दे रूह दे विच जिहड़ा पैंदा है ते साडे विच फस मन दे विच आ जांदा है ते जिहड़ी कथा विचार है वह जिहनूं कहिंदे आपां सौण दा मीह जिहड़ा जमीन दे विच रसदा है वह है कथा विचार। करो रसना पित्तर कोई भी रसना बांझी ना रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतरराज अभमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरा बो जोन परमावै धन भूमिका जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक ईहा मुक्त आगा सुख पावै।

तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनती कहो कवन छुटकार आस हस्ती राथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझा ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू लिहे यानी भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल हो हे चिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल सार सियान सगली मना साध संग पावे सच धना हर पूंजी संच करो व्यवहार ईहा सुख दरगा जाकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाका मस्तक लेख एको जाप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक बिस्थार एक ते भई एक राज पराश्त गए।

दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध की बचन अमूलीक लाल एहे रतन सुन।